Elumbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

बिजली झै आकाश माथि निरमाउ झुम्किरी झै अधेरीमा ज्योति जगाउ बिजली झै आकाश माथि निरमाउ

0: இளம்பு பிரேக் டைம். शिशु तथा बालबालिकालाई अत्याधिक गर्मीबाट जोगाउन, बालबालिकालाई दिउँसोको चर्को घामबाट टाढा राखौं, उनीहरूलाई हलुका र खुकुलो कपडा लगाइदिऊ, गर्मीबाट बचाऊ।
1: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र।

Elembu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

Elambu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: तपाईँ अहिले हेलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएको छ।
1: अब रंग फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो रंग आदि बेरी से हरंग लसी समाप लवन मसुला जयमसी तथा नमस्कार लासो ख्याफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी चमक बसुगो अंक 65 रंग निदा स्वागत मुला ना वियोग तामाङ रंगला ज्ञानी आदि बेरे हमुला रंग थे परिस्थिति करेदा हरंग लसी समावलावन मुसुला चुसे या मी परमेश्वर ना रंगला विश्वास बढ़ावला।

0: खबर डोनाला रो रोला परमेश्वर से याङला लुइरी आदि बेरी हावरी पिन्सुमला ताकि याङ पत्ता लगप लबारी हमला कि याङला विश्वास लट्टा रोरी मुला कि आरे यदि याङ से याङला विश्वास चन्दो हाजीबाई ताम्री मुला बिसी पत्ता लगप लाजी विषम याङ से याङला गल्ती ग्याम लोप्तोला रोला क्षमा रिदोला हेन्दे रो फिरिला याङला भरोसा बरब लबरी प्रयास लधोला चुरङला सिनोन परमेश्वर से राङला चेला गदे द कार पिनबारे पिन्सिमुला ताकि थेनी गदे से लानन फल फलाब लबारी हमगाई प्रेरित सोह्र अध्याय रि पावल देन सिलास परमेश्वरला सिवा लजिबा मुबा जब थेनी गदे द पक्राउ लजी हेन्द छाक्ची पुङजी थेनीचा जेली युजी चु थेनी गदे लागेरी परीक्षाला मैदान मुबा थेनी गदे द टा हानाङ मुबा तिगा चु परमेश्वरी लुबा मुबा थेनी गदे से पिनबा प्रतिक्रिया ग्याम याङसी चु सेवारी हमला प्रेरित सोह्र अध्याय पच्चिस तर म्युन नङसल क्यार पावल देन सिलास प्रार्थना लबान परमेश्वरला वै गोबन मुबा वच्छे सन्दो कैदी गदेसी चा न्यनबन मुबा पावल देन सिलास तिग्दा रमब लजिबा तिग्दा थेनी गदे प्रशंसक वै गदे गोजिब मुबा थेनी गदेसे दत्ती देन भयनक पिटाई भोक्तिबा मुबा थेनी गदे जेलरी चिजिब मुबा थेनी गदे लक्काङ काङसाजी खिबा मुबा जब थेनी गदे आदि बेरीला सामना लजिब मुबा थेनी गदे से परमेश्वर दा राङला छोनाता देन शक्तिला स्रोतला रूपले स्वीकार लबन प्रतिक्रिया पिन्जिए प्रेरित सोह्र अध्यायला छब्बिस जमहेन्से थेरी तिखुरिन ग्रिन सङ्गुल खसी झ्यालखानाला जक योङ योङ तसी तुरन्तन झ्यालखानाला म्राप गदे ठोङजी ओछे थेनी गरी जम्मनन खिबा सन्दु गदिन रङनोन ब्रजी याङला परमेश्वर आश्चर्य कर्मलाबा परमेश्वर मुसुला राङला लुइरी थेराङबा हाजी बाई नोन परिस्थिति आरे जहाँ ग्याम परमेश्वर से राङदा बचाव लसुमुला चुनन परमेश्वर से मसाला लाग्री लाल समुद्र दा विभाजन लसुजी परमेश्वर से युसुफ दा जेल ग्याम याकरकी शासक पदवी लाना लसुजे जहाँ थे महत्वपूर्ण राष्ट्र फेरी अधिकारी मुला जहाँ रङ आदि बेरेला सामना लसुमुला परमेश्वर देन छ्यामला रङला सम्बन्धरी आनन्दित ताबरी जारी थन्सुगो परमेश्वर दा राङला छो नाता देन शक्तिला याकर्खी जखेन स्रोतला रूपी स्वीकार लसुगो राङला हरेक आवश्यकता छोना लावरी परमेश्वरी भरोसा थन्बा बानीला विकास लावरी प्रयास लसुगो चुसे परमेश्वर दा रोला राज्यला लागरी राङदा ज्ञान गे गदे लावरी अनुमति पिन्ला जोसे लामा रङ्से छोना मात्रले आत्मिक फल उत्पादन लस्युमुला आमेन रङ्गीला जीवनले परमेश्वर से प्रशस्त आशिष पिन्छु गई प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी निन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङ्गीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353 धन्यवाद हस् त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङ्गी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
1: टाइम चेक इट्स 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बजेको छ।

हे खुट्टा बाले अनुहार सागर नाकै रहेछ भाले, खुट्टा बाले अनुहार सागर नाकै रहेछ भाले, छाला फेरि यता सुना।